शास्त्र में विचार हो रही है। सिख दा ऐसा प्यार हो गए गुरु दे नाल, हिरदे चों आ मंग निकले। कथा तो तुसीं अगे भी सुनी, दास फिर सुनाउंदा है। कई शरीर नवें बैठे होंदे तरन तारन दा, दास दा कोई मित्र, उन्हें दास नूं सवाल कीता कि तुसीं गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी इहो जी तस्वीर वेखी कोई जिहदे विच तीन चार सिख मगर होण। मैं कहा हां देखी ते है, गुरुद्वारा बदेकसर भी लगी हुंदी, होर कई जगह भी देखते हां कि गुरु साहब खड़े ने, बिधी चंद मगर है, बाबा बुढ़ा जी मगर ने, हो भी दो तीन सिख मगर ने। वो तरन तारण का दास का मित्र आखन लगा, कहन लगा गुरु साहब की तस्वीर के मगर जेड़े बाबा बुढ़ा जी ते बिधी चंद तो अलावा दो तीन सिख नजर आते ने। कहन लगा उन्हां चों एक सिख है जेड़ा जोधका जात दे नाल संबंध रखदा है। दास ने कहा तेरी गल सुनाउण दा की मकसद? आखण लगा असी उस सिख दी कुल विचों चले आ रहे हां, ओ जोधका जात दे सिख दी कुल विचों। मैं कहा भागा वाला भाई, ओ सिख जिन्ने गुरु हरगोबिंद साहब दुनिया के मालक की सेवा की होवे कुल चों चलता आ भागा वाला। गरीब नवाज ने कहा धन धन सो कुल, माता नूं भी धन कहा, पिता नूं भी धन, ओ कुल नूं भी धन कहा। मैं कहा भी वड्डे भागा वाला उस कुल चों चलदा आ रहा। उन्हें फिर दास नूं एक वचन सुनाया, आखन लगा ओ जोधका जात दा सिख गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे वेले जिदी कुल चों सी चले आ रहे हैं। कहन लगा एक दिन गुरु साहिब ओदी सेवा तों प्रसन्न हो गए। एक दिन गुरु साहिब ओदी सेवा तों बहुत प्रसन्न होए। एक रस दी सेवा सी, सेवा दे पिछे निष्काम भावना सी। कईयां दी सेवा पिछे कई तरह के मनोरथ हुंदे, एक हुंदी निष्काम सेवा। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते हुंदे सन जो निष्काम होके सेवा करता है ओदे सारे कार्य बिना कहे दे रास आ जांदे। जो निष्काम होके सेवा करता है ओदी निष्काम सेवा ते प्रीत वाली सेवा। एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब ओ मेरा दुनिया का मालक प्रसन्न हो गया, पूछे सिखा तेरे ते प्रसन्न हां, आज कोई मांग लिया? क्योंकि मेरी विचार चल रही है मांगना मांगण नीका, हर जस गुरते मांग। किसले ताड़ा भी अरदास मन जुड़े, बाणी च मन जुड़े, आ वाहगुरु के सिमरन च मन जुड़े। किसे वेले वैसे मालक टुट पवे ते फिर पता होवे मंगना की है। यह दास नूं ओह गल सुना रहा है, कहिंदा गुरु हरगोबिंद साहब ओह दुनिया के मालक, सारी सृष्टि के मालक, बंदी छोड़ दिता दो जहान दे वाली, मेरी ते तीरी दे मालक, शहनशाह गुरु हरगोबिंद साहब प्रसन्न हो गए। कहण लगे सिखा मंग की मंगना? सात संगत करनी वालियां कोलों सोझी लिया, जिन्हां नूं रब ने इतनी सोझी बख्शी ओए उन्हां दी सोझी क्यों किनका पर सोझी साडी झोली च वी पै जाए। गुरु साहिब प्रसन्न होए, कहण लगे सिखा तेरी सेवा तो प्रसन्न, मंग की मंगना? गुरु हरगोबिंद साहिब दे वेले दी कथा, एक माई ते भी महाराज प्रसन्न होए सी।

राग मल्हार बारे गुरु अमरदास जी का वचन है, मल्हार शीतल राग है, हर त्याया सांत होए। फिर ये भी हुक्म है, गुरमुख मल्हार राग जो कर है तीन तन मन शीतल होए, गुर शब्दी एक पछाणिया एको सच्चा सोए। मल्हार दा प्रभाव है सारे पासे उत्साह दा वातावरण हो जाना। मल्हार राग विच बाणी दा मीह पैंदा दिसेगा अते जिसने भी घुट अमृत बूंद पी लई ओ निहाल हो गया। साची बाणी मीठी अमृतार, जिन पीती तिस मोख द्वार। अमृत बचन है, इस बाणी विच बहुते शब्द मीह अते बबीहे दे संबंधां नूं ही दर्शाउंदे हन। यह भारतीय संगीत का बड़ा प्रसिद्ध राग है, ना केवल संगीतकारां विच सगो जन साधारण लोकां विच बहुत प्रिय है। मल्हार एक मौसमी राग है, भारत की भूगोलिक स्थिति अनुसार इस राग का गायन सावन भादरों के महीनों विच वधेरे कीता जांदा है। बरखा रुत विच यह हर समय गाया जा सकता है, उंज यह रात के तीजे पहर गाया जाता है। इस राग विच दोनों निषाद लगते हैं अते बाकी सारे स्वर शुद्ध। इसका वादी मध्यम अते समाधी षड्ज है। डॉक्टर अजीत सिंह जी पेंटल पासों यह शब्द सरवण करो, बरस सरस आग्या अते दूजे शब्द का मनोहर कीर्तन राग मल्हार विच ही कर रहे हैं भाई नरेंद्र सिंह जी। पवित्र शब्द है राम राम बोल बोल खोजते वड भागी। पहला शब्द सरवण करो, बरस सरस आग्या।

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल

कै मन लाजुम रसा, अवरा पै कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वाहगुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास कर दे, मन लोकां पास फरोल दे। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा, वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, जो मन दी गल है ऐ मनुख जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा, तो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है, गुरु नू आ गए। महाराज बचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहुत बहुत कडास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वाहगुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस भजन विच इस शब्द विच

नमस्कार गुरुदेव को। सतनाम जिन मंत्र सुनाया, पवजन विचों कड के मुक्त पदार्थ माहे समाया। ज्यो बुलावे तुम बोलहे स्वामी, ज्यो बुलावे तुम बोलहे स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक।

संत सरन जो जर पर सो जन उदर नहार। संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा।

0: く自分で。ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मारता, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, सृष्टि का करता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करते हैं। असी लोग ए सारिया रूहां सारिया आत्मावां परमात्मा तो विछड़िया हुई हैं। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लख जून दे विच परम दे भटकते फिरते हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतते फिरते हां। अनेक तरह के दुखां सुखां दे विच फसे हुए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए हुए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेडे परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए, वो सारे कर्मां बंधना तो रहत हो गए। वो लो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उन्हां दी चरण धूड़ नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर बर्मा

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हां नूं देवत्यां दे विच सर्वोत्तम मन्ने गए हन। जा रहे हन किसे जंगल दे रस्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करदे हन, मत्था टेक रहे हन, धूड चक चक के मत्थे नाल ला रहे हन, धन धन कर रहे हन, धरती ते नमस्कार करदे हन बारंबार, जिन्हां नूं लोक नमस्कार करदे हन। पार्वती पुछदी है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किस नूं नमस्कार करदे हो, तुसी किस नूं मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी इह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो। भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने तपस्या कीती है। बोलो इस धरती का कण कण पवित्र होया होया है, इस धरती की यह समर्था है कि पवित्रता बख्श सकती है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषों का जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साडे लोगों वास्ते। भावें संसारक तौर ते महापुरुषों के जीवन नूं कोई सास उसका कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असीं अपनी बोली दे विच ओ विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरुष जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह होनी जिन्हां ने सात संगत जिन्हां दे नाम तों सारे लोग जानते हैं, भाई वीर सिंह जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां, बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान सात संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह सात संगत संत बाबा नंद सिंह तों उपरंत ते साध संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं साध संगत सुणाउंदे हुंदे हन पटियाले वाले भाई भी।

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हों के पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चों के जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं ए सी गुरमुख की कठाली विच ढा लिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते सात संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुआं की संगत करने वाला सी। बोलो साधुआं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां दा सी। हुण सात संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्होंने बड़ा प्यार करते सन। गुरु नानक साहब जाके साधुआं को बैठा करते, भाई फकीर को बैठते। सो बाबा जस्सा सिंह जी सास आए साधुआं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते सास संगत भावें घर वाला उसके ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर सास सुंदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी कम काज करदा है उसके कन्न भर दिते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा है, घरवाली तेरी कदे ख्याल रखिया, वह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकदे, पिता जी ने ही शिक्षा दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आउणा है। सो साध संगत परंतु हुण ओह किथे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन, बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए। कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड़ के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह, कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है, जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रसादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता, फिर हुण की हो सकदा है, की करिए हुण, किसे नहर च धक्का दे दिओ। कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए। पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह, बोलो सतनाम। अमृत छकिया पंजां प्यारां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनू पंजां प्यारे ने नाम दी दात दत्ती है, ते नाले कहा जो तेनू ए गुरमंत्र दत्ता है, मूल मंत्र दत्ता है, नाम दत्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इनू भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डना। ए नाम दी दात गुरु तों जो मिलदी है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी साध संजू कच्चे कोठे दे विच बैठे, 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन, लत्तां भी साध संगत कमजोर हो गईयां, तुरिया नहीं साध संगत, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो सिमरन देव जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध सुन पिता जी सोचदे हन की करिए, बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती कीती महापुरशो कृपा करो इस बालक नू अपनी चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस बालक नू अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदेव सिंह जी कहंदे हन बालका ए तां बालकी है भाई, ए तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालक च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतनाम। दुनिया दी इक निगाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनूं तां कोई परवाह नहीं, तुहानूं दुनिया दी परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तां बई अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम। ए बड़ियां सास लम्मियां विचारां हन। सास बाबा जस्सा सिंह दा ऐसा जीवन ते सास संगत क्यों बई तैयार है? फिर ए लाइन बड़ी औखी है, ए फकीरी करनी बड़ी औखी है, भेस धारना सौखा है। हां महापुरशो बाबा जस्सा सिंह ने कहण कीता इस तो बिना कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म होवेगा मनोगे? हां मनांगे। महापुरशा ने कहना कीता वही गल्लां दे नाल नहीं गल बननी, ए बहुत औखा रास्ता है, बड़ी औखी मंजिल है। बाणी दसदी है

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीज ना गलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिन्ने त्याग दतिया। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिन्ने लाजां दा त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोकां ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इस नूं घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उस नूं भी कई लोग लानता पाउण लग गए घर वाले नूं भी, दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास संतोष जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सास संगत ऐसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुर्दा होए मरीज ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुर पीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरु। सास संगत 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सास संगत कीड़ियां दे पौण ते सुट दिंदे सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहिंदे। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरु। किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सात संग गलेल दे विच सात संगत पा के गोले चलाउंदे, सात संग बाबा जस्सा सिंह दे मथे दे विच सात संगत मारी जांदे, मथा चार चार उंगल, छे छे उंगल सात संग तुफण जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े ਘਾੜਤ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਇਤਨਾ ਹੁਕਮ।
2: ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਵੇ ਮਰੀਦ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ ਨਹੀਂ।

बेटी आई, बेटे आए। देखो हम आए, सब परिवार देखा, किसी की क्या मजाल है, हमारे किसे छोकरे को, किसे बुजुर्ग को कोई बोल सके, हम झगड़ा करते हैं। लेकिन जब मालिक प्रभु आप आ जाता है, वो क्या करता है, कभी 5 साल का बूटा ले जाता है, कभी 10 साल का ले जाता है, कभी 50 साल का ले जाता है, कभी 60 साल का ले जाता है। हम क्या करें, हम तो यही बोलते हैं, जिस ठाकर सियो ना ही चारा ताको की जय सत नमस्कार। हम तो यही बोलते हैं, नानक बोलन चखना दुख छड़ मंगी है सुख, सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। जिथे बहस नहीं कर सकते, आगे कुछ नहीं कह सकते, वहां पर तो चुप ही करनी पड़ती है। ऐसे भी हो जाता है खेत वहां पर ही रह जाए, रखवाले कोई ले जाए। ऐसे भी हो जाता है परिवार यहां ही, हम अपने आप को उस परिवार का मुखी मानते थे, वो मुखी कोई ले जाता है। इसलिए समझाते हैं, आप तो कहते अभी तो नहीं, हम जिम्मेदारियों को पूरा कर कर मरेंगे, फिर नाम जप लेंगे। अरे भाई कैसे जपेगा, जब नैनो नीर पहे तनखीना पे केस तुदवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे परानी। जब आपका गला खाऊं खाऊं करेगा फिर जप लेगा, आंखों में पानी निरंतर बढ़ेगा बहेगा फिर जप लेगा, नहीं जप सकेगा। कहते अरे भाई मैं आपको बात बताता हूं, आपने तो क्या करना है, क्या निभाना है, आपके जो शरीर के अंग है ना, उन अंगों ने ही आपको वेला कर देना है। भाई गुरदास भी बोले, अन्ना लूला पिंगला तन थक्का मन दै दिसता है, आंखें होते हुए अंधा हो गया, पैर होते हुए लंगड़ा हो गया। मैंने तो देखा, आपने देखा है, जब बालक था तब भी सहारे की जरूरत होती थी, बूढ़ा हो गया अब भी। बालक अवस्था में दांत नहीं थे, बूढ़ा हुआ तब भी। बालक अवस्था में भी कांपता था, बूढ़ा हुआ तब भी। बालक अवस्था में तत्लाती जबान से मांगता था, बूढ़ा हुआ तब भी। अरे सोचो भाई, जब नाम जपने का समय है क्यों नहीं जपते। आखो भाई ऐसी उलझन में बंधा हुआ, आज कह रहे हैं, कायरे मन बिखिया बन जाए, विषय विकारों के जंगल में क्यों जा रहा है। आखो भाई गुरु, अरे नाम क्यों नहीं लेता परमात्मा का, जिसने आपकी हर समय सहायता की है, सहाय हुआ है, आगे भी होगा। भूलो रे ठग मूरी खाए, एक बात मैं आपको बताता हूं, ऐसे लगता है इस मनुष्य ने परमपिता परमात्मा को गवाया नहीं, भुलाया है। आखो वाहिगुरु, मैं फिर बोल दूं, इस मनुष्य ने प्रभु को गवाया नहीं, भुलाया है। देखना जो हमने गवा दिया होता ना, एक बुरकी भी हम मुख में नहीं डाल सकते। आखो भाई, उसको गवाकर तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, उसको गवाकर तो हम बोल भी नहीं सकते,

देख भी नहीं सकते, उसको गवाह कर को तो जी भी नहीं सकते। ये सच्चाई बात है, हमें उसको गवाया नहीं बुलाया है। आखो वाहिगुरु। जब हम ये बोलते हैं बुलाया है, तो पितृ वाणी में ऐसा संकेत दिया है, ए भूला नहीं बुलाया गया है। आखो वाहिगुरु। भूलो रे, भगत जी ने कमाल कर दी। विस्माती विचार प्रगट कर दिए। आखो वाहिगुरु। भूलो रे, देखना ये भूला नहीं, इसको भुलाया गया है। मानमुख भूले भुलाई है, भूली थोर न कर। सवाल करने वाले ये करते हैं, आप कहते हैं भुलाया गया, तो किसने भुलाया है? आखो भाई, आपने ये बोला कि भूला नहीं भुलाया गया है, तो किसने भुलाया? साहिब कहते हैं बाबा माया भरम भुलाए। आखो भाई, इसको माया ने भुला दिया, माया ने पुलावड़ों से पुला दिया। भुलावड़े भुली पुल पुल पच्छो ताणी, फिर छोड़ अड़ी सुती फिर की सार ना जानी। ए माया के पुलावड़ों में भूल गया। फिर सवाल करते हैं, ये तो 84 लाख जूनों का सरदार था, इसको तो सब बोलते थे बहुत सुंदर, बहुत चतर, बहुत सियाना, ये भूला क्यों? क्यों भुलावड़े में आया? आखो वाहिगुरु। ये भुलावड़े में क्यों भूला और कैसे भूला? जब हमें ये बोला भूलो रे ठग मूरी खाए, आखो वाहिगुरु, इसको माया ने कैसे भुला दिया? कहते हुआ क्या, इस माया ने इसको ठग मूरी ठग बूटी सुंगा दी। आखो वाहिगुरु। जय ऐसे समझ लें कि इस माया ने इसको ठग बूटी खिला दी, ठग ओरी भूलो रे ठग मूरी खाए। ए पलावड़ों में आकर भूल गया, इसने माया की ठग मूरी खा ली, ठग बूटी खा ली। कहते फिर क्या हुआ? कहते रतन पदार्थ खोया ठगया मुठा जाए। कहते हुआ क्या, जब इसने ठग बूटी खाई तो इसका रतन पदार्थ ज्ञान का पदार्थ जो इसको सूझ थी वो जाती रही। ये तो ये भूल ही गया कि मैं इंसान भी हूं कि नहीं। ये भूल ही गया कि मैं मनुष्य भी हूं कि नहीं। देखना मन करके मनुष्य है, तन कर नहीं। मनुष्य होता ही मन कर। जे अगर मन वाला मनुख होकर मनुष्य होकर मन को नहीं पहचानता, सिर्फ तन को पहचानता है, तो इसकी वृत्ति पशु वृत्ति है। जे मन वाला मनुष्य होकर आत्मा को जानता है तो महात्मा है। जब हम मन वाले मनुष्य होकर सिर्फ तन को देखेंगे, मन हमारा जरूर मैला होगा। जब मन वाला मनुष्य मन को आत्मा की ओर ले जाता है तो मन निर्मल हो जाएगा। हमारा मन मैला क्यों है? कि हम तन की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों को देखते हैं, शरीर में रहने वाले को नहीं। आंखों भाई, हम शरीरों को तो पहचानते हैं, जो शरीर में आप नारायण रहता है उसको पहचानते ही नहीं। आखो भाई, जो इस मंदिर में भगवान रहता है उसको तो पहचानते नहीं। तो फिर मन मैला होता है।
उसके पहचाने तो बिना मैला होगा, जरूर होगा, होता रहेगा। आखो वाहेगुरु, आखो वाहेगुरु, वाहेगुरु। अब कहते हैं कि ये बहुत सियाना था, 84 लाख जूनों का सरदार, फिर इसने ये ठग मूरी क्यों खाई? तो आज के शब्द में कहते ऐसे हुआ, जैसे मीन पानी में रहे काल जाल की सुध न लहे, जैसे मछली पानी में रहती है, पानी में रहकर भी ये नहीं जान सकी कि पानी हमारा जीवन है, ये भी नहीं जान सकी ये जो जाल डाला गया है ये हमारी मौत है। मैं नहीं कहता, सतगुरु कहते हैं, मछली जाल ना जाने या सर खारा असगाह, अत सियाणी सुंदरी क्यों कीतो विसाह, कीते कारण पाकड़ी काल न टले सिरा। हुण अपने कीते कारण पकड़ी गई है, बड़ी सुंदर सी, सियाणी सी, सतगुरु कहंदे इसने भरोसा क्यों कीता? अगली पंक्ति विच बोले भगत जी, जेबा स्वादी लीलत लोह, अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई। ए मछली अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई, ऐसी जीव दे स्वादा करके मारी गई कि लोहे दी कुंडी नूं ही निकल गई ते शिकारी दे जाल विच फस गई। जेबा स्वादी लीलत लोह, लोहे दी कुंडी नूं निकल गई ते साहिब बोले, भाई रे इउं सिर जाणो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल। आखो वाहिगुरु, जिवें मच्छी ते जाल पै जांदा है। आखो वाहिगुरु, अचिंता ही। इसी तरह समझाते हैं हमें, ऐसे करो, आखो वाहिगुरु, ऐसे करो भाई। ये मनुष्य भी नहीं जान सका कि परमात्मा की बंदगी हमारा जीवन है, माया का जाल हमारी मौत है। ये जान लेता तो परमात्मा की बंदगी में लीन हो जाता और जीव के चस्कों और पदार्थों के भोगों के लालच में ना आता। ऐसे बोले हैं भगत नामदेव जी, जैसे ए मछली जीव के स्वादों के कारण पाकरी गई, शिकारी के जाल में आ गई, तैसे ही ए मनुष्य पदार्थों के भोगों और जीव के चस्कों लाभ और लोभ की गिरफ्त में बंधा हुआ, ऐसे कनक कामनी बांधियो मोह, सुंदर स्त्री और पदार्थ सोना आदिक इस दे मोह पा माया दे मोह दे रूप रंगा विच इतना मस्त हो जांदा है कि इस नूं अपना आप भुल जांदा है ते माया दे जाल विच। आखो वाहिगुरु, अपने आप को भुलाकर माया के बंधन में आ जाता है। और फिर आगे समझाते हैं, कहते देखना, जिमें मद मक्खी शहद की मक्खी, आखो वाहिगुरु, शहद तो इकट्ठा करती है, दूसरे को डंग मारकर दूसरे को जहरीला डंग मारती है। और इसे मालूम नहीं, इस मक्खी को मालूम नहीं आखिरकार क्या मिलेगा, आपके मुख में स्वा तुआ लेने वाला और कोई ले जाएगा। ऐसे ही समझाते हैं, जैसे गऊ अपने बछेरे के लिए दूध
संचन करती है, पर अहीर आता है गला बांध कर ले जाता है। फिर समझाते हैं आप तो माया के कारण बहुत संचन करने के लिए बहुत कालना कालते हैं, बहुत कमाई करते हैं, लेकिन आपने समझा नहीं एक दिन ऐसा होगा धन तो धरती में ही दबा रह जाएगा और आपका तन ही मिट्टी बन जाएगा। आंखों भाई कहते एक धनी था, उसने बहुत धन संचन किया। ऐसे धनी ने संचन कर एक पीपे में उस धन को संचन कर धरती में गाड़ दिया और ऊपर बिस्तर लगाकर सो जाता, किसी को देखने ना देता, अपने कुटुंब के किसी भी रिश्ते वाले को देखने नहीं देता, बहुत उसकी राखी करता। सारा जिंदगी ही, सारा जीवन ही उस माया को संचन करने में गुजार दिया। कहते एक दिन ऐसा हुआ जमदूत उसको लेने आ गए। वो बोला ऐसे करो भाई, मुझे छोड़ दो, इस धन का 1/4 हिस्सा ले लो। जमदूतों ने पीटा ये धन आगे नहीं जा सकता। कहते आधा ले लो। फिर पीटा, कहते पूरा ले लो, मुझे छोड़ जाओ। फिर पीटा, कहते भाई ये अगर मुझे नहीं छोड़ते, एक बार मुझे देखने तो दो, जा रहा है और बोलता है अरे माया आप तो बहुत पत्थर दिल निकली, आपने क्या किया, मैंने तो सारी जिंदगी सारा जीवन आपकी राखी की, लेकिन आप दो कदम भी मेरे साथ नहीं चलती, कैसी आप पत्थर दिल निकली। माया बोली अरे मैं क्या करूं, आपने मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मुझे बनाया था भूखों को भोजन खिलाने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था दुखियों की सेवा करने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था लोड़वंदों की लोड़ पूरे करने के लिए, बेसहारों का सहारा बनने के लिए, पर आपने मुझे धरती ने में गाड़ दिया। मैं तो प्रभु से ये निवेदन करूंगी आपको भी परमात्मा धरती में गाड़ दे। धन धरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तिष्णा अति जरै, साध संगत कब हूं नहीं करै, कहत नाम देव तांची आन, निरपो निरपै होए भजिए भगवान। भक्त नामदेव जी हमें समझाते हुए ऐसे बोलते हैं अरे भाई जे जीवन जीते हुए भगवान का सहारा ले लें, भगवान का आसरा ले लें, भगवान के नाम धन की कमाई करें, शरीर तो आगे नहीं जाएगा लेकिन परमात्मा का नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा। कहते पर ये बात नाम तन कमाने की और आत्मक जीवन की जुगत की तब ही पूरी होती है जब हमें अब मोहे मिलियो है जियावन हारा, जब पूरा सतगुरु मिल जाता है। पूरा सतगुरु मिल जाए जीवन की जुगत आ जाती है, हम कैसे जिए। और एक पितृ शब्द में सतगुरु कैसे कहते हैं, आओ पहले वो शब्द पढ़ लें।

माता दे उदर विच प्रतिपालना करदा है बच्चे दे। फिर जदों जन्म हुंदा है तां फिर दुध दी दात देंदा है। तेरे लई किदियां उसने बरकतां छोड़ियां हन संसार विच कि माता के उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विशारी है, मनो क्यों विशारी है, ऐ वगदाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। माता दे पेट विच जठर अग्नि जिथे तेरी प्रतिपालना अकाल पुरख वाहिगुरु करदा रहा, क्या हुन न करेगा। इसलिए ऐ प्राणी ऐ जीव तू डोलना छड दे, तू पटकना छड दे। मानस की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। एक ईश्वर एक अकाल पुरख वाहिगुरु सारिया नु दे रहा है, क्या तेनू ना देवेगा। इसलिए भाई तेरा फर्ज है जितने श्वास वाहिगुरु ने तेनू बख्श दिया ना, तू जप जप के उन्हां नू सफल कर ले। कुदरत कीम ना जानिया वड्डा बेपरवाह, कर बंदे तू बंदगी जिचिर घट में शाह। जितने तक तेरे श्वास चल रहे हन तू उसका शुकराना कर। तू समर्थ अक

वही बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहाँ जहाँ पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे हुए।

दुनिया के सब रंग सतनाम श्री वाहगुरु के अंदर आवे। जिसने नाम जपा उसे फिर और किसी मस्ती की जरूरत नहीं रहती। शराबी को मस्ती है, जुआरी को मस्ती है, बाबा जी कहते हैं ये मस्ती जब आ जाए तो फिर इतने आनंद में डूब जाता है इंसान, किसी ऊंचे रस में आनंद नहीं आता उसे। हजूर कहते हैं मिलता